0: SeekNet presents Stories for Children.
1: Guru Amar Das was the third Guru, and he had two daughters and two sons. One of his daughters, Bibi Bani, became the wife of Bhaijatha. Bhaijatha became Guru Ram Das. But before he was Guru Ram Das, he was Bhaijatha and the husband of Bibi Bani and the son-in-law of Guru Amar Das. Bibi Bani was deeply devoted to her father, to Guru Amar Das, and she served him every day in every way. She always sat with him at night when he meditated. She would comb his hair. She would feed him. She would prepare him when he was ready for bed and see to his every need. One night, she had brought him his food. Guru ate. He sat and talked. And then he decided it was time for him to meditate. So Guru Amar Das sat on his couch, closed his eyes, folded his hands, and began to breathe long and deep, and began quietly, silently, to recite the beautiful names of God. Bibi Bani sat with her father while he meditated, because she loved to be in that energy. It always uplifted her and made her feel closer to her father. But as she sat that night, she noticed that one of the legs of the Guru's couch was very wobbly. And with horror, she realized that the leg was breaking, and that if it broke, the couch would fall and Guru would tumble out. He could hurt himself, because at that time, Guru Amar Das was a very old man. He was more than 90 years old. Bibi Bani wondered, "What can I do? I can't let him fall. I can't disturb his meditation." So she very gently reached her hand out and placed it under the broken leg of the Guru's couch and lifted it up with her bare palm. Well, you know what broken wood is like. Splinters dug deep into her skin, and after some time, it penetrated the skin and her hand began to bleed, but Bibi Bani didn't budge. She didn't move, and she lifted the couch and held it and held it and held it as Guru meditated deep and deep and deep. After some time, Guru Amar Das came out of his meditation. He opened his eyes slowly, and he saw Bibi Bani sitting there. And he saw that she was in a strange position. He goes, "Hey, Bani, what's happening?" And she looked at her father. There were tears in her eyes from the pain. She goes, "Nothing, Pitiji." Guru Amar Das looked down and he goes, "What have you done?" He stood up and he said, "Quickly!" And he removed her hand with his own fingers. He pulled the splinters out of her palm. And he says, "My daughter, you didn't need to do that. Why have you done this?" She said, "Pitiji, you're the Guru. I can't allow the Guru to fall." Guru Amar Das looked at her and smiled. He gave her such a big hug. He said, "My daughter, you're a lion. You're a lion. Ask me anything. I'll grant any request." She goes, "Pitiji, I have everything. I'm the daughter of the Guru. I have three beautiful sons. I have a wonderful husband who's devoted to you. What more do I need?" And he goes, "My daughter, I need to give you something. Please ask." She said, "The only thing that I could ask of you is that the line of the Guru stay in our family, stay with the Sodhis." Because Bibi Bani was married to Bhaijatha. Bhaijatha became Guru Ram Das, but he was from the long line known as the Sodhis. Guru Amar Das looked at her and said, "Yes, this is what's appropriate. I'll grant this to you. But we need to understand that by doing this, the flow of the guruship is channeled in a very specific way, and there could be problems, there could be suffering, but only the sodis have the grit to sustain this through time and space. Yes, my daughter, this will stay in the sodhi line. So shortly after that, Guru Amar Das made by Jetha Guru Ram Das and left his body. And the son of Bhaijatha was Guru Arjan. The son of Guru Arjan was Guru Hargobind. The grandson of Guru Hargobind was Guru Har Rai. The son of Guru Har Rai was Guru Har Krishan. And the son of Guru Hargobind was Guru Tegh Bahadur. And the son of Guru Tegh Bahadur was Guru Gobind Singh. So all of the gurus were descendants of Guru Ram Das and Bibi Bani.
0: Would you like to hear more stories like this one? Come to seeknet.com/stories.
2: ਸਿੱਖਨੇਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
3: ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੇਰੀ ਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
4: ਕੌਣ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ।
3: ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ।
5: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ।
4: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
3: ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ,
4: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ।
3: ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
4: ਚੰਗਾ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ।
6: ਮੈਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4: ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਂਟਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ।
3: ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੇਖੀ।
7: ਨਾਨਾ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਇਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ।
4: ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ,
3: ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ।
7: ਕੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ? ਲੈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।
4: ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ।
7: ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇਂ।
3: ਤਾਂ ਉਸ ਬੁਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
7: ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ?
4: ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੰਤਮਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ।
7: ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ?
4: ਭੇਟਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾਂ? ਅੱਛਾ, ਮਿਠਾਈਆਂ। ਹਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਹਾਂ,
3: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰੋ।
8: हे महान गुरु, मैं तुहाडी सेवा विच सदा हाजर हां। कृपा करके मैनू अपने चरणा विच जगा दियो।
3: हर रोज उदोवें काम तो अपने घर वाल इकट्ठे तुर के जांदे अते फिर अपने अलग अलग राहां ते चले जांदे। एक गुरु जी कोल उना दे वचन सुनन,
8: वाहे गुरु,
3: शब्द गाउन,
8: वाहे गुरु, वाहे गुरु,
3: दान करन अते साध संगत नाल समा बिताउन लई चला जांदा। अते दूजा दोस्त उस औरत कोल चला जांदा। उसने अपनी पत्नी अते बच्चियां नू झूठ बोलिया अते उना दी पेटां दी दुरवरतों कीती। उसने उना दा पैसा जुआ खेडन, उस औरत नाल शराब अते सिगरट पीण विच खर्च कर दिता। उसने अपना समा बुरी संगत विच बिताया, उना नीवे लोकां नाल जो अपनी जिंदगी खराब करदे सन। एक कई दिनां तक हर रोज हुंदा रहा। आखर विच एक दोस्त ने कहा,
4: मेरी गल सुन, तू अपना सारा समा गुरु जी दे कोल चंगे काम करदे होए बिताउना है, जदकि मैं अपनी पत्नी नू झूठ बोलदा हां अते मैं अपना सारा समा माड़े कमां विच बर्बाद करदा हां, पर फिर भी अपनियां जिंदगियां नहीं बदलियां। तू भी उही है जो पहला हुंदा सी अते मैं भी उही हां, ता फिर की फर्क पैंदा है कि असी चंगा करिए जां माड़ा। अपनी जिंदगी तां उवें है जिवें पहला सी।
3: दूजे दोस्त ने कहा,
8: आओ आपा ये सवाल उस ईश्वर तो पुछिए, मैनू विश्वास है कि आपा नू सही उत्तर मिलेगा। कल नू मेरे गुरु जी दे मिलन तो बाद अते तेरे ओ सब कुछ करन तो बाद जो तू करदा है आपा एथे ही मिलदे हां, आपा इस रुख हेठा ही मिलांगे अते आपा नू जवाब अपने आप मिल जाएगा।
4: इंज ही करदे हां, मैं देखण लई उत्सुक हां कि की होण वाला है।
8: ठीक है मेरे दोस्त, हुण आपा कल ही मिलांगे।
3: अगले दिन ओ गुरु जी कोल गया अते संगत दी निघी गोद विच बैह के उसने रूहानी वचन सुने अते गुरबाणी दा गायन कीता। दूजा दोस्त उसे ही औरत कोल दोबारा गया। ओ इंसान जो हमेशा माड़े काम करदा रहा तय हुए टिकाने ते पहला ही पहुंच गया।
4: की तू इत्थे है दोस्त? नहीं।
3: उन्हें इंतजार कीता,
4: ला ला ला ला।
3: होर इंतजार कीता, अते जदों ओ इंतजार कर कर के अक गया तो उसने मिट्टी विच कुछ लकीरां खिचणियां शुरू कर दितियां। मिट्टी विचों उसनू सोने दा एक टुकड़ा मिलिया।
4: सोना?
3: उसने होर खोदिया, ओनू कुजा मिलिया। उसने सोचिया,
4: अज मेरा दिन चंगा है, हो सकदा है इत्थे होर भी सोना होवे।
3: पर उस कुजे दे अंदर सिर्फ कौड़ा सी।
4: कौड़ा? ओहो, ए ता बड़ा निराशाजनक है, पर शुक्र है मैनू एक सोने दा टुकड़ा ता मिलिया, चलो यही सही है।
3: फिर थोड़ा समा इंतजार करन तो बाद दूजा दोस्त गुरु जी दी संकट तो वापस आया।
8: ओह,
3: ओ लंगड़ा रहा सी।
8: आए मेरा पैर।
4: की हो गया तैनू?
8: मैं गुरु जी दी संगत तो होके वापस पैदल चल के आ रहा सी अते मैं तिलक गया अते मेरा पैर एक वड्डे कंडेदार झाड़ी ते पै गया। ओ मेरे पैर दे विच डूंगा खुब गई, माड़ी किस्मत आ मेरी। ओए,
3: ओह दोवें ही बड़ी उलझन विच सन।
4: ऐस गाल दी कोई समझ नहीं लग रही। असी उस ईश्वर तो पुछया कि साडे चंगे जां माड़े कर्मां नाल कोई फर्क पैंदा है अते कि ए ओदा जवाब है, मैं बुरा कीता मैनू सोना मिलिया, जद कि तू चंगा कीता अते तैनू सट वज गई।
8: मैनू विश्वास है कि ईश्वर ने सही जवाब ही दिता होवेगा।
4: मैनू ए जवाब बिल्कुल भी समझ नहीं आया, इसदा की मतलब होया?
8: मैं भी मंदा हां कि मैनू भी इस दी समझ नहीं लगी। आपां नू गुरु जी कोल जाना चाहिदा है, ओ सानू इनू समझाण विच मदद करनगे।
3: अगले दिन ओह दोवें गुरु नानक देव जी कोल गए।
8: गुरु जी, मैं हर रोज तुहाडे कोल आउंदा हां अते मेरा दोस्त भी हर रोज अपने परिवार नू एही दसदा है कि ओ तुहाडे कोल आउंदा है, पर इस दी बजाए ओह उस औरत कोल जांदा है जिसने इस नू झांसे विच पाया ते गुमराह कीता होया है।
3: उसने सारी स्थिति बारे विस्तार नाल दसिया, किवें उन्हां दोवां ने अपना अपना समा बिताया अते किवें उस नू सट वज गई अते उस दे दोस्त नू सुना लग गया।
8: सो असी दोवें उलझण विच हां, तुसी इस दे राहीं सानू की संदेशा देना चाहुंदे हो?
3: गुरु जी ने अपनी डूंगी दूरदर्शता नाल समझाया कि अपनी पिछली जिंदगी विच चंगा दोस्त एक लुटेरा सी अते उसने लोकां कोलों बहुत कुछ लुटिया। उसने बहुत सारे झूठ बोले अते बहुत माड़े काम भी किते। इस मौजूदा जिंदगी विच उसकी मौत कंडा चुभण करके लिखी हुई सी, पर उसने बहुत प्रगति की अते अपने समय की वरतों चंगे तरीके नाल कीती अते अपना मन उस ईश्वर दे पवित्र नाम नाल साफ कर लिया। वह पवित्र संगत विच रच मिच गया अते अपने बहुत सारे माड़े कर्म धो लए। इस दे अपने उपर किते कर्मा कारण इस दे कर्म इस हद तक ठीक हो गए कि मरण दी बजाए उस नूं सिर्फ पैर ते ही सट लगी।
8: वाहे गुरु, गुरु जी मैं तुहाडा धन्नवादी हां। अते मेरा दोस्त?
3: गुरु जी ने अपनी डूंगी दूरदर्शता नाल फिर तो समझाउंदे होए कहा कि अपनी पुरानी जिंदगी विच माड़ा दोस्त एक भला इंसान सी। ओ दूजियां नाल अपना सब कुछ सांझा करदा सी। एक वार ऐस ने एक संत आदमी नूं सोने दा एक टुकड़ा दिता सी। उस श्रद्धा अते साफ दिली कारण सोने दा ओ सिक्का कई गुणा ज्यादा वध गया। उस नूं एक पूरा सोने दा कुजा मिलन वाला सी, पर उस दे अपने करनी कारण उस दे चंगे कर्म घट गए अते सोना कोले विच तब्दील हो गया। उस नूं सिर्फ ओही एक सिक्का प्राप्त होया जो उसने पहला दिता सी। उन्हां दोवां ने अपने आप नूं निमाणा महसूस किया अते शुकर करन लई गुरु जी दे चरणा विच डिग पए।
4: वाहिगुरु।
3: साडे सब दे अपने कर्म हुंदे हन, कोई चंगी जां माड़ी किस्मत नहीं हुंदी। सानू जो भी अपनी जिंदगी च मिलदा है ओ अपनी पिछली करनी करके मिलदा है। अपनी कीमती जिंदगी नू बर्बाद ना करो, इस दी बजाय जिन्ना हो सके संत रूपी इंसाना दी संगत विच रहो। जे तुहाडे माड़े कर्म हन तां तुहाडी किस्मत माड़ी हो जावेगी, जे तुहाडे कर्म चंगे हन तां तुहाडी चंगी किस्मत बर्बाद नहीं होवेगी अते कोले विच नहीं बदलेगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे हन,
9: सुख दुख पूर्व जन्म के किए,
3: भाव सुख अते दर्द साडी पुरानी जिंदगी दे कीते कर्मां दे नतीजे हन।
9: सो जाने जिन दा तै दिए,
3: ऐस पेत नूं ओही परमात्मा जानदा है जिसने सानू एह दुख सुख दिते हन।
9: किस को दोष देहे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है।
3: हे प्राणी तू किसनू एह दोष दे सकदा है, ए तां तू अपने ही कीते कर्मा दा करड़ा फल भुगत रहा है।
2: सिख नेट दी कहानियां सानू बहुत अच्छी लगदियां ने, मैं अगली कहानी सुनन लई बहुत उत्सुक हां।
10: You are listening to SeekNet Radio.
11: SeekNet presents Stories for Children.
1: Guru Nanak and the Brahmins. Everywhere he went, Nanak saw a world that lived in fear. He challenged the Brahmins for their exclusionary and hypocritical ways and chided the pundits for putting fear in the hearts and minds of the people. He challenged the caste system and most especially the role of women. Guru Nanak emphasized in his teachings that all life was born of woman and that the future depended upon the grace and devotion of a woman. He spoke openly against the common and forced practice of sati, which required a widow to throw herself upon the funeral pyre of her husband and die with him, and against the gruesome practice of killing a firstborn child if it was a girl. In Haridwar, a most sacred place of pilgrimage for Hindus, the Guru joined a huge pre-dawn crowd that had gathered on the shores of the Ganges. They entered the water and performed a ritual for blessing their ancestors and washing away their sins. The assembled crowd began throwing water toward the east in the direction of the rising sun.
12: Praise to the sun god Surya Devi Om. Honor to the ancestors of the old Om. Victory Jai.
1: Nanak entered the cold rushing water himself and moved among the throng, cupping his hands and tossing water toward the west. Eventually, even in such a chaotic mass of humanity, his peculiar actions drew attention.
13: Look at that man. He's,
14: what is he doing?
13: He's throwing water in the wrong direction.
14: He never gets the prayers from the ancestors like that.
13: What's he doing?
14: That won't work.
13: That's ridiculous.
14: He should stop.
1: A large crowd surrounded him and stared in amazement. Finally, an astonished Brahmin asked,
15: "Hey, fool, what are you doing? Are you a Hindu or a Muslim?
12: If you're a Muslim, then why have you come to a Hindu place of pilgrimage?"
1: asked another. The crowd was gathering courage now, and a third Brahmin asked,
15: "Why are you throwing water to the west instead of to the rising sun? What guru has taught you such a strange ritual?"
1: Guru Nanak paused and faced the last who spoke. "Brother, why do you throw the water toward the rising sun? To whom do you offer it? Who's there to receive it?"
15: "Why?"
1: answered the first Brahmin.
15: "Why, we make this offering to the souls of our ancestors."
1: "To your ancestors? Why?"
15: "Are you truly such a fool?"
1: the Brahmin responded.
15: "We make this offering because it gives their souls honor and brings us great happiness, satisfaction, and prosperity,"
1: he said proudly with a great air of piety. "Seriously?" asked the Guru. "How far away are your ancestors?" A learned pundit stepped forward arrogantly, the U-shaped mark of the deity Vishnu freshly drawn on his forehead.
16: "Our ancestors abide thousands upon thousands of miles away,"
1: he stated with great authority, mightily satisfied with the sound of his own voice against the rushing waters of the Ganga. Without a word, Nanak turned back toward the west and began to forcefully throw huge palms full of water in that direction with a fury that seemed to hinge on desperation, as though he were fighting a fire.
15: "Stop! Stop!"
1: the gathered men shouted.
15: "Stop, you fool! What are you doing? You have not answered our questions."
1: Nanak paused again, nearly out of breath, a look of concern on his face. "Well, when I left the Punjab, I had just planted a field. There's no one there who will irrigate it for me, and I'm now concerned that it will all go to seed if I don't water it. You see, my field is on an elevated area, and the rainwater won't settle on it. I have no choice but to irrigate it from here."
16: "Are you crazy? How do you suppose this water will ever reach the Punjab? Your field will dry up, you madman."
1: "Truly?" asked the Guru in amazement. "My field is much closer than your ancestors. So how can the water that you throw reach them, yet the water that I throw not reach my field?" No one spoke as the sound of the rushing Ganga harmonized with the bells and horns and morning chants that filled the air. With chilling seriousness, Nanak looked the pundit in the eye and said in a quietly penetrating voice, "You have forgotten God. Without love or devotion, your minds have drifted and gone astray."
16: "What are you saying, you ignorant fool? How can a mind that recites God's name forget him or go astray?"
1: "A mind that recites the name with sincerity and devotion never forgets and cannot go astray. Yet a mind that is filled with hypocrisy, as yours," and he turned to another, "and yours," and he turned again, "and yours, can be true to none and will drift like a boat with no anchor.
17: Your malas are only for show, and your recitation is hypocrisy. Nanak turned to the Brahmin who first approached him. You were thinking of your trade with Multan, to the next, and your trade with Kabul, to the next, and your trade with Delhi, then to the pundit, and you were thinking of what you might gain from this gathering of pilgrims. To a man, the crowd stepped back down the water 2 or 3 paces. In the distance, the sounds of the morning rituals continued against the constant rush of the Ganges. While the rising sun broke over the Himalayas and shone brightly upon the serene face of Nanak.
16: What can we do?
17: Whispered the pundit. Make your devotion live in your heart and mind. Recite the sacred name with love and let it fill you. In this way, you will bring honor to yourselves and your ancestors. You're lost in your rituals and do them only for show, while your hearts putrefy under the garbage of your minds. Awaken from the Maya, he said brightly. Care for your communities. Serve the living God that resides within you by serving each other, and let devotion fill you. In this way, you will be transformed. With that, Guru Nanak waded to the riverbank in silence. With a nod to Mardana, who had been watching the dramatic scene evolve, Guru Nanak walked toward the southwest, away from the Ganges and down toward the plain of the Punjab. Mardana hastily collected their things, cast a parting glance at the befuddled congregation still standing in the water, and double-timed his steps to catch up with the Guru.

आप सबना दा निक्की जी कौर जिंद दे जीवन विच जी आया नू। अज जिंद कौर दा उस दिन नवे स्कूल विच पहला दिन है। वो बस निकलन तो पहला अपने सवेर दा नितनेम कर रही है। वो सोचती सी कि अज सब कुछ ठीक रहेगा, पर जिंदगी एनी सौखी नहीं। जिंद कौर तुहानू एक आम जी कुड़ी जरूर लगेगी, पर आम दी परिभाषा तो कितने दूर है। जिंद कौर इन्ना पाठ करती है, इन्ना नाम जपती है कि सचमुच उसके कोल रिद्धियां सिद्धियां हन कि वह दूजे लोगों विच सफर कर सकती है।

0: बस एक औरत है हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया ता तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदो जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रा नू अपने सामने प्रकट होंदे देखती है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा कजरी धरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदो समां है योध्यां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीहड़ी वार है?
5: हा हा हा, साडे कोल बहुत सारीआं वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।